आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: वेश साय तू ए क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: अरे हे सूरदास का औलाद, तो के सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा आ गया।
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाय देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तो हर प्रजा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम

0: पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए।
1: चल आया
2: रे बगुआ।
1: गोविंदा,
2: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
1: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
0: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया। अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
1: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवालदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहते हैं। अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
3: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
3: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

0: हाय राम, का हुआ रे गोविंदा?
1: हो तेरा बिटवा जवान होई गवा, हो तेरा बिटवा जवान।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

जाने जाने को जारी रामू तारी के जमता।

रही क्या? पीछे नहीं हटूंगा मैं, मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं बुद्धि को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं।

0: कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं। अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिले।
1: खोल दो।

0: देखा सर, पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात।
1: नहीं वागले नहीं, पहले मुलाकात, फिर बात, और फिर जरूरत पड़े तो लात।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: गारे गारे
1: ये जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल गया
0: गारे गारे
1: ये आम को भटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो

0: चतुर एक पेर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तेरा लंबा है।
1: अगर कहा से तू बड़ा ही निकम्मा है, जाके चुप जा तू वहाँ जहाँ तेरी अम्मा है।
0: आ, आ, इधर तू आ, आ।
1: जा, जा, घर तू जा, जा।
0: अरे आ, आ, इधर तू आ, आ।
1: जा, जा, घर

0: से।
1: जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है।

0: सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: वक्त बहुत कम, गाड़ी को मत करना धीमा, प्यार की हम देखेंगे सीमा।

0: आज का दिन है खुशबू कुमारी जी के नाम। हैप्पी बर्थडे खुशबू कुमारी जी। आज के इस खास मौके पर रेडियो हॉटस्टार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। आज अगले कुछ समय तक सुनिए खुशबू कुमारी जी की पसंद के शानदार बॉलीवुड गाने और मनाइए उनका बर्थडे संगीत के साथ। हर गाना बने एक खूबसूरत याद और हर पल चेहरे पर लाए एक प्यारी सी मुस्कान। खुशबू कुमारी जी, हमारी यही दुआ है कि आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, खूब तरक्की मिले और आपकी हर विश पूरी हो। तो जुड़े रहिए रेडियो हॉटस्टार के साथ और एंजॉय कीजिए खुशबू कुमारी जी का स्पेशल बर्थडे सॉन्ग रिक्वेस्ट शो। वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे खुशबू कुमारी जी।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और आप सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक आरजे अमन के साथ। और कल शाम 6 बजे सुनिए एक शाम वतन के नाम। देशभक्ति के जज्बे से भरे शानदार गीतों के साथ मनाइए आजादी का ये खास जश्न। अपनी मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश भेजिए शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक सिर्फ रेडियो हॉटस्टार ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार ऑफ द वीक। और आज के मेहमान है गोविंदा। यस गो गो गोविंदा। और गोविंदा के आप तो जानते ही हैं कि सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं बता दूं कि आज इनके जन्मदिन है इन खुशबू कुमारी जी का। तो खुशबू कुमारी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज का प्रोग्राम आपको समर्पित है। तो सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह जुड़ने वाले हमें सरफराज जी यानी कि सरफू भाई बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आप जुड़ गए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। साथ ही साथ रणवीर सिंह जेठाला जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और हुकुमचंद जांगड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और सुनील कुमार जी क्या है,
1: अमन भैया गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील कुमार बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से। ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही लाजवाब, गैम्बलर, और दिल से धन्यवाद है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम।
0: ओके, और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे जो यानी कि शॉर्ट कास्ट बना हुआ है वहां से खुशबू कुमारी जी को जन्मदिन की बधाइयां दे सकते हैं। बिल्कुल, वह सब ये इसी के लिए बना हुआ है, शॉर्ट आउट में ही आप अपना जन्मदिन की मुबारकबाद दें, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है। और बबीता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बबीता जी। और साथ ही साथ सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वेश भगत जी वेलकम करते हैं आपका भी। और मिसाल अंगा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सरिता सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। ओके जी, और साथ ही साथ अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और रवि जी, आर के रवि जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और ओम नारायण राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सभी का। ओके, तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सुनते हैं सबसे पहला गाना। और किन का गाना मैं ले लूं, एक काम करते हैं, पहले यानी कि गोविंदा के बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे गाना मैं प्ले करूंगा।
2: कॉमेडी का बादशाह, डांस का किंग, इमोशन, जज्बात और एक्शन का राजा, राजा बाबू गोविंदा। गोविंदा साहब का पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा, जन्म 21 दिसंबर सन 1963 में हुआ। ये बात भी गौर करने लायक है कि एक ऑनलाइन सर्वे में मालूम पड़ा था कि गोविंद अरुण आहूजा इतिहास के 10 सबसे ज्यादा मशहूर एक्टर्स में से एक हैं। गोविंदा साहब के माता पिता दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे। चूंकि अपने परिवार में गोविंदा सबसे छोटे थे, इसलिए इनका नाम रखा गया चीची। पंजाबी में चीची के मायने होते हैं सबसे छोटी उंगली। गोविंदा साहब के पिता अरुण आहूजा फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे और महान डायरेक्टर महबूब खान ने इन्हें फिल्मों में मौके दिए, जैसे कि एक ही रास्ता और औरत। उसके बाद इनके पिता ने खुद भी एक फिल्म प्रोड्यूस की और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डूब गई। गोविंदा साहब की पढ़ाई लिखाई की तरफ रुख करें तो पता चलता है इनका कॉलेज रहा बसई का अन्ना साहब वर्तक कॉलेज। इनकी पहली फिल्म थी तन बदन, जो कि इनके अंकल आनंद साहब ने ही डायरेक्ट की थी। फिर आई लव 86 और ये इतने मशहूर हुए कि बहुत ही कम समय में इन्होंने तकरीबन 40 फिल्में साइन कर डाली। गोविंदा की पहली रिलीज फिल्म थी इल्जाम। इल्जाम 1986 की टॉप 5 फिल्मों में गिनी गई। इस फिल्म ने ये बात पुख्ता कर दी थी कि गोविंदा नेक्स्ट सुपरस्टार हैं, चाहे डांस हो कि एक्टिंग, हर क्षेत्र में गोविंदा कमाल के हैं। इनके बड़े भाई कीर्ति कुमार खुद एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और उन्होंने फिल्म बनाई सन 1988 में हत्या। इस फिल्म में गोविंदा के अभिनय को बहुत सराहा गया और ये फिल्म हिट साबित हुई। अभी 80 का दशक चली रहा था और गोविंदा बतौर हीरो आगे बढ़ रहे थे, इन्हें मौका मिला अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का। फिल्म थी सन 1991 की हम। और कमाल की बात यह है कि जब बच्चन साहब ने रिटायरमेंट ली और रिटायरमेंट से वापस आने की कोशिश की, तब इन्होंने गोविंदा का ही दामन थामा और फिल्म थी बड़े मियां छोटे मियां। चाहे दिलीप कुमार रहे हों या फिर अमिताभ बच्चन या फिर रहे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, इन सभी के साथ गोविंदा ने कंधे से कंधा मिला के अभिनय किया। चाहे वो कुली नंबर वन रही कि राजा बाबू, आंखें रही कि शोला और शबनम, ये जोड़ी साबित कर रही थी कि मनोरंजन संपूर्ण होना चाहिए। गोविंदा साहब के निजी जीवन की तरफ रुख किया जाए तो पता चलता है कि 11 मार्च सन 1987 को इनकी शादी हुई सुनीता जी से। इस शादी को तकरीबन 4 बरस के लिए छिपा के रखा गया, क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था कि अगर हीरो शादीशुदा है तो शायद उसकी फैन फॉलोइंग में कमी आ सकती है। इस तरह की बड़ी अजीबोगरीब बातें उस जमाने में चला करती थीं। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन। बेटी टीना आहूजा भी फिल्मों में शुरुआत कर चुकी है। नहीं कितने उतार चढ़ाव आ गए हों, पर जब भी गोविंदा डांस करने के लिए उतरते हैं, अभिनय की अदा दिखाते हैं, तो सब यही कहते हैं कि हीरो नंबर 1 तो यही है।
0: बिल्कुल हीरो नंबर वन के साथ आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो डिमांड में लेने वाला हूँ दो दोस्तों की, निशांत राय बोले जी और नीलेश विरोकार जी, सुनना चाहते हैं ओ लाल दुपट्टे वाली। नाम बता दो प्लीज, क्या नाम है?

0: अपने नाम बताओगी तब ना काम बताएंगे यार, पहले ही काम पूछ रही हो। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास है। संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं संध्या पटेल जी। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है सुन सुन के। और ओम नारायण राय लिखते हैं गोविंदा पर ही हमेशा सुपर डुपर मूवी बनाया है, सभी मतलब दिलों पर राज किया है। जी बिल्कुल। और अनिल कुमार जी हरिद्वार वाले जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अजय भागा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अशोक कुमार जी लिखते हैं कि गोविंदा पर जानकारी बहुत बढ़िया लगी है, मैं अशोक कुमार जी पटना से जुड़ चुका हूं और गैम्बलर वाला लाजवाब गाना आगाज हुआ है, मजा आगे सुन के फीडबैक सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी,
0: नमस्ते।
1: दो भाई का फरमाइश में शामिल किए, दोनों भाई को धन्यवाद देते हैं। और आज खुशबू कुमारी जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू, ईश्वर उनको खुश रखे, आवाज रखे, यही दुआ करते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने बाप माँ का नाम रोशन करें,
0: बिल्कुल,
1: और खूब खुश रहे, आवाज रहे, यही आशीर्वाद भी देते हैं।
0: बिल्कुल, आशीर्वाद की जरूरत है आपकी, धन्यवाद आपका भी। और निशांत राय बोल जी लिखते हैं मेरा गाना सुनाने के लिए थैंक यू सो मच। अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, क्या कहते हैं?
2: अमन भैया गुड इवनिंग, मैं कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ अनिल कश्यप सिवान बिहार से। और आप कैसे हैं? आप ठीक है ना? और मैंने सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से अपना फरमाइश भी डाल दिया है,
0: अच्छा।
2: तो प्ले कर दीजिएगा जब आपकी इच्छा हो।
0: ऐसा ऐसा गाना बेहतर है, क्या बताएं। सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि कहा गया इनका मैसेज, आखिर फिल्म का शानदार गाना सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया सुन के। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि ए टाइमलेस क्लासिक विद सो मच फन एंड चार्म, अच्छा ओके। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना, नाइस सॉन्ग सुनने को मिला। अशोक कुमार लिखते हैं कि 1993 की पैदान नंबर 12 पर बजने वाला ये गाना फिल्म आंखें का सुनकर मजा आ गया, इंदिवर के बोल और संगीत बप्पी लहरी ने दी थी। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, जितेंद्र जी सुनना चाहते हैं लाल चुनरिया वाली पर दिलाया है, इंजॉय कीजिए इस गाने को भी।

0: लगता है कि लड्डू ही खाना पड़ेगा। फिलहाल प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और सुनीता गोपी लिखते हैं कि नमस्कार, मैं भी जुड़ गई हूँ सरायकेला झारखंड से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी सुनीता। और फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, जितेंद्र जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू,
0: वेलकम किया आपका भी। और अजय भगत जी लिखते हैं कि लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे, बहुत ही बढ़िया गाना है जी। और MD जलील जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करना, डिम्पी जी का सुनवाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा गाना है। और ये गाना इंजॉय कीजिए, जंगबाज डिम्पी जी, इंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल बस मेरे लिए तो दुनिया में आई है, बहुत सारे फीडबैक भी आ गए हैं मेरे पास। आर के रवि जी लिखते हैं कि एक शाम आती है तेरी याद लेकर, एक शाम आती है तेरी याद लेकर, और एक शाम जाती है वो तेरा ख्वाब लेकर, और पर हमें तो उस शाम का इंतजार है जो आए तुझे अपने साथ लेकर आए है। क्या बात है भाई। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। कृपा भी लिखते हैं कि तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गाना है। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि ये तेरे आने से जैसे मेरी दुनिया समर गई, इस गीत की हर धुन दिल में उतर गई। वाह क्या बात है, क्या लिखते हैं। अजय भगत लिखते हैं कि हाई वोल्टेज डिमांड है। सभी लोग खड़े हैं क्योंकि ये क्या पता अब किस डांसर सही कहा, बिल्कुल ये फीडबैक।
1: अजय अमन सर जी, बहन जी, इतना अच्छा गाना सुनाए, धन्यवाद, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और नंदलाल जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी नंदलाल यादव जी गाजीपुर से। अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी का है, और जब से तुझे देखा है, क्या इंजॉय कीजिए।
2: जब से तुझे देखा, रब से तुझे मांगा,
0: बिल्कुल
2: जब

0: बिल्कुल ओ माय स्वीट हार्ट। और इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ सर्वजीत शेट्टी जी का, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, लेकिन फीडबैक के साथ अशोक कुमार जी लिखते हैं कि ये मंदाकिनी गोविंदा पर फिल्माया हुआ शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया है। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी।
1: जय अमान सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर
0: जी, वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे आत्मालाम जी लिखते हैं अमन सर जी हम भी शामिल होंगे हैं, धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके जी, और सुनिए अनिल जी क्या कहते हैं।
2: अमन भैया मैं मार्केट में हूँ और ये गाना जो चल रहा है बहुत ही बढ़िया है, और जिनका फरमाइश है उनके लिए मेरे तरफ से एक बर्गर है, क्योंकि अच्छा। मैं बेबी बर्गर खरीद रहा हूँ।
0: अच्छा,
2: तो खाएंगे तो वो नहीं, भले ही मैं ललचा के उनको और फिर मैं ही खाऊंगा।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और सर्वजीत शेट्टी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है। अच्छा, आप आ भी गए, बहुत सही समय पे आए हैं। और अशोक पाजी लिखते हैं कि ओ माय स्वीट हार्ट, यानी तेरी मोहब्बत का असर यानी कुछ यूँ हुआ कि गीत खत्म हो गया मगर दिल का एहसास खत्म न हुआ। विष्णु चंद्र जी जूते के बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अगला जो डिमांड हमें सर्वजीत जी का, तुम सा कोई प्यारा कोई सच में मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम्हें मालूम नहीं है।

और इस गाने का ये लाइन सच में मेरे दिल से होकर गुजरती है, मतलब मेरे दिल के इतने करीब है ये लाइन, और स्पेशली डेडिकेट मेरी सुंदरता की मुरत जी के लिए है, मेरी यानी परी जी के लिए।

0: कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, और क्या चीज हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है। और वैसे फिर देख जा चुका है, शामिल करते हैं।
1: नमस्ते मनसर जी, आज गोविंदा जी का गाना चलेगा तो धूम ही धूम मचेगा, बहुत शानदार गाना चल रहा है, प्रोग्राम बहुत मस्त झकास चल रहा है, धन्यवाद सब दोस्त।
0: ओके जी, ओके। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं,
2: अर्जय मन सर जी, सर्वजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी अब 10 बजे जी मैं बताऊं, आज तो प्रोग्राम करूंगा 10:30 बजे तक, और वैसे बता दूं कि डिनर 11 बजे के बाद ही मैं करता हूं, कभी 12 भी बज जाता है, टेंशन मत लीजिए। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को

भी अपना होश खो बैठे और क्या चीज हो तुम शायद तुम्हें खुद भी मालूम नहीं है। अच्छा मोहन वाले जी कार्यक्रम शानदार चल रहा है, थैंक यू। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग है, धन्यवाद। और गजानंद जी लिखते हैं कि सर्वजीत सेठी जी के पसंद बेहतरीन, लाजवाब, सुनकर मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो यानी प्रियंका जी का है और सुनना चाहती हैं ओ राधा तेरे बिना, तेरा शाम है आधा।

0: बिल्कुल वादा है और वो राधा तेरे बिना ये शाम है आधा बिल्कुल। और तैयब अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम सलाम बहुत बहुत वेलकम है चोलापुर से। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड, ओ माय गॉड मजा के सुन के। और गजानन सरकार जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी के पसंद, हो राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा, बहुत ही शानदार गीत सुनने को मिला, धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ओ राधा तेरे बिना, बहुत ही अच्छा गाना, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। और देवराय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि अमन जी अच्छा ओके मैं कोशिश करता हूँ। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ओ राधा तेरे बिना गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आत्माराम जी लिखते हैं कि हमारा फेवरेट गाना राधा के संगम का, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को सुनवाने के लिए। और प्रियंका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अशोक पाल जी लिखते हैं कि राधा के बिना श्याम अधूरे हैं जैसे, यानी प्यार के बिना एहसास के इस गीत में मोहब्बत की वो मिठास है जो सीधे दिल में उतर जाती है। और रवि जी, हर के रवि जी लिखते हैं कि वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग है जी, बिल्कुल इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे बहुत से दोस्तों के हैं, दो ग्रुपों की फरमाइश है जिसमें शामिल हो रहे हैं हमारे, मैं बता दूं, मंगेश देशमुख जी, राजमल हिवराले जी, मोहन नेवाले जी, फूले वक्त संजू भाव जी और मिसाल अंगद जी, मतलब और गजानन जी का पूरा ग्रुप इसमें शामिल है। तो एक एक करके सभी के ऑडियो को सुनवाता हूँ, पहले सुनवाता हूँ मैं आपको फूले वक्त संजू भाव जी का ऑडियो।
1: रेडियो हॉटस्टार, रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी, आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: अमन सर जी, कैसन
0: बानी?
1: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी, मैं फूले भक्त संजू भाऊ बोधरो महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है शुक्रवार और आज की अपनी थीम है स्टार ऑफ द वीक। और आज के कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता श्री गोविंदा जी, इनको आपने बतौर मेहमान आज हॉटस्टार पर आमंत्रित किया है। और आज के कार्यक्रम में इन्हीं के गीत चलने वाले हैं सर, तो हमने भी इन्हीं की एक फिल्म ली है सर, फिल्म का नाम है हम, और इसी फिल्म का एक गीत है सर जिसे आवाज़ दिए है मोहम्मद अजीज साहब जी इन्होंने, और गीत के बोल सर इस प्रकार है। कागज कलम दवा दिला, लिख दू दिल तेरे नाम करू, दिल क्या तू जान भी मांगे तो दे दू दे दू दे दू, ये पहला काम करू। कागज कलम दवा दिला, लिख दू दिल तेरे नाम करू। अमन सर जी, आप ये गीत सुना दीजिए।
0: ओके।
1: और डेडिकेशन में याद करूंगा सर, सबसे पहले आपको
0: थैंक यू सो मच,
1: वेलकम अमन सर जी, बाद में आपकी सुंदरता की मूर्त, इनको भी ये गीत में डेडिकेट करूंगा सर।
0: थैंक यू सो मच उनके लिए,
1: धन्यवाद सर उनके लिए। और बाद में चुलबुली आवाज की मलिका मेरी छोटी और प्यारे बहन आरजे वंशिका जी, आदरणीय आरजे परमार जी, और रेडियो ऑटो स्टार सुन रहा है मेरा पूरा परिवार, यह गीत मैं सभी को डेडिकेट करूँ सर, प्लीज सुना दीजिए। रेडियो ऑटो स्टार जो दीवाना बना दे आरजे अमन जी के साथ, मैं फूले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आते हैं आपको भी। और इसी में जैसे कि हमारे मिसाल अंगद जी भी, उनका भी ऑडियो है इसी गाने के लिए, सुनवाता हूँ।
2: हेलो अमन सर,
0: बोलिए।
2: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से फिर एक बार आपके कार्यक्रम में हाजिर हो गया हूँ अमन सर जी। और आज स्पेशल गोविंदा पर फिल्माए हुए गाने आपको भेजने हैं अमन सर जी। तो आज गोविंदा के 90s के और 2000 के बहुत सुपरहिट फिल्में हैं अमन सर जी। तो आज इसी एक सुपरहिट फिल्म का गाना मुझे सुनने का है, जो फिल्म है हम, जो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और गोविंदा इस फिल्म के कलाकार है। तो अमन सर जी, गोविंदा पर फिल्माए हुआ गाना मुझे सुनने का।
0: ओके, तो आपका ऑडियो कहाँ गायब हो गया है? आधा ही है लेकिन, और पूरा तो आया नहीं ऑडियो में, क्यों आपका पूरा ऑडियो नहीं आ पा रहा है पता नहीं क्यों। और फिलहाल इसी गाने के लिए, जैसे मैंने आप सबको बताया कि इस गाने में मंगेश देशमुख जी, राजमल हिवराले जी, मोहन नेवाले जी एंड गजानन जी का पूरा ग्रुप शामिल है। तो इंजॉय कीजिए इस गाने को, सुनवा रहा हूँ। कागज कलम दवातला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, इंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक। और सच में कागज कलम दवा तला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं मेरे पास, बहुत सारे। ओ माय गॉड, संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं संतोष गौंड जी। और ये प्रियंका जी क्या करती है?
1: हेलो अमन जी, गुड इवनिंग। जो आपने मेरा सॉन्ग सुनाया और उस सॉन्ग की मैं दो लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ और आपकी सुंदरता की मूर्त को भी सुनाना चाहती हूँ। एक

0: सागर बनूंगा, सीपी हूँ मैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: तुझ में छुपी सीपी हूँ मैं, तुझ में छुपी है प्यास फिर भी जाना।
1: बहुत ज्यादा प्यास लगी है जी।
0: थैंक यू सो मच इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: धन्यवाद आपका भी। और इसी बात पर यहाँ पे फीडबैक है हमारे इनका, गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार है, हम सभी साथियों को गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि ये स्याही से लिखे अल्फाज मिट सकते हैं मगर दिल पर लिखा तेरा नाम कभी नहीं मिटेगा, क्या खूबसूरत एहसास है इस गीत में। जी बिल्कुल। और अशोक कुमार जी लिखते हैं कि हम फिल्म का शानदार गीत मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाज़ में 1991 के पैदान नंबर 15 पे बजने वाला ये गीत आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने दिया था। जी जी धन्यवाद देते हैं आपको इस जानकारी के लिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये फीडबैक सुन लेता हूँ पहले।
2: हेलो अमन सर,
1: बोलिए।
2: हमारा गाना आपने सुनवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दोस्तों ने फीडबैक दिया इस गाने के लिए, तो मैं सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से।
1: ओके, अभी तो मतलब फीडबैक आ ही रहे हैं ना। और नंदलाल जी लिखते हैं कि ग्रुप का गाना लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। और आत्माराम पाटिल लिखते हैं कि यह हमारे गजानंद जी का ग्रुप फूलबाग संजू भाव जी सभी को धन्यवाद देते हैं। जुड़ चुके हैं यहाँ पे निकलस जी डेनमार्क से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं निकलस जी आपका। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है जी, थैंक यू सो मच आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं।
3: हरजय अमन सर जी, मिसाल अंगद जी, फूले बख्श संजू भाव जी, गजानंद सुलकर जी, पूरे ग्रुप का भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी ग्रुप का भाई को सभी को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू,
1: वेलकम है आपका। और साथ ही साथ एम एस परमार जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं, आवाज नहीं आ रही इनकी, एम एस परमार जी की आवाज नहीं आ रही।
4: बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाव जी, बहुत ही खूबसूरत प्यारा गाना आपने सुनाया और आपने मुझे वंशिका जी अमन जी और सभी को डेडिकेट किया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और संजय भाव जी आपसे बातें के लिए भी कई दिन हो गए, उसकी तो कॉल भी कीजिएगा। और ये जो गाना है नंबर वन है और इसकी वर्डिंग भी बहुत ही खूबसूरत है और इसका जो टाइटल है गोविंदा जी जिन पर आज सारे गाने चल रहे हैं, ये भी एक मजेवे कलाकार है और इनकी सारी फिल्में खूबसूरत और हंसी मजाक वाली हुआ करती थी, बहुत ही प्यारी लगती हैं इनकी फिल्में, सभी फिल्में बहुत ही प्यारी लगती हैं। और मैं सिर्फ कभी कभी ही आता हूँ मोहन जी के प्रोग्राम में और आज आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मुझे डेडिकेट किया, अनुष्का जी को डेडिकेट किया, अमन जी को डेडिकेट किया इस गाने में, क्योंकि गाना ये जो गाना है मेरी पसंद का बहुत ही पसंदीदा गाना है। तो शुक्रिया संजय भाव जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अशिल्पा बेन लिखते हैं कि हम फिल्म का बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। काजल झक्का जी लिखते हैं कि कागज कलम दवातला और ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और फूलबाग संजू भाव भी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं ना। आज नेटवर्क इशू कर रहा है, बहुत स्लो स्लो ऑडियो लोड हो पा रहा है।
5: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी। अमन सर जी, मैं फूले भक्त संजू भाऊ पोदड़ महाराष्ट्र से आपको सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आपने हमारे ग्रुप फरमाइश को चलाया और हमारे ग्रुप फरमाइश को अपने कार्यक्रम में जगह दी, थैंक यू सो मच सर। आपने हमारा गीत चलाया और हमारे गीत के पहले एक गीत चला सर, राधा का संगम इस फिल्म से, इस गीत ने सर महफिल लूट ली। सच में आज के जो मेहमान आपने आमंत्रित किए सर गोविंदा जी, इनके द्वारा किए गए सभी फिल्में और सभी फिल्मों के सभी गीत आज भी सभी के जबान पर याद है सर, सुपर और सुपर सुपर उनके गीत रहे सर। आज का कार्यक्रम भी एकदम बढ़िया रेडबुल और लल्लन टॉप होने वाला है क्योंकि आप हर कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह सजाते हो, मज़ा आ जाता है सर। मैं फूले भक्त संजू भाऊ रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे आर जे अमन जी के साथ, धन्यवाद।
1: ओके धन्यवाद देते हैं आपका भी। और साथ ही साथ यहाँ पे यहाँ यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड दोस्त गजानन सुलकार जी या संजू भाव जी, गुरु डिमांड बहुत ही शानदार लगी, सुपर लगी है और सभी को थैंक यू सो मच डेडिकेट करने के लिए। जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी और फरमाइश प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। और सरिता सिन्हा जी लिखती हैं कि हम फिल्म का शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और मोहन निवारे जी लिखते हैं कि सर जी को प्यार भरा नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर से हिट के लिए धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और रवि जी लिखते हैं आर के रवि जी के, तुम्हारी एक मुस्कान से समर जाती है जिंदगी, लिखते हैं कि तुम्हारी एक मुस्कान से समर जाती है जिंदगी और तुम इन पास होते हो तो महक जाती है जिंदगी। और यूं तो हर पल हम जीते हैं इस जहां में, लेकिन इन तुम्हारे बिना अधूरी सी लगती है जिंदगी। जी बिल्कुल सही कहा है, इन तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है, आई मिस यू। ओके, और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये कागज कलम दवातला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। देवराय जी लिखते हैं कि देवराय जी का कल बर्थडे है, तो भाई आपको अग्रिम इन जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल और आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन्यवाद देते हैं आपको। और ओम नारायण राय जी लिखते हैं कि बाइक चलाने के कारण बहुत से दोस्तों का गाना नहीं सुन पाया, कोई बात नहीं अब सुन लीजिएगा। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मस्त गाना लगा है, मजा आ गया सुन के। और कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो नंदलाल यादव जी का है, सुनवाना चाहते हैं कौन सा गाना, याद रखियो चार अक्षर प्यार के, एंजॉय कीजिए।

और दोस्तों मैं बता दूं कि आरजे वंशिका जी का यानी कि कल का प्रोग्राम होगा 11 बजे से, 11 बजे जरूर यानी सुने, और यानी कि 6:45 से होगा, सॉरी यानी कि 5:45 से होगा, यानी 6:45 तक आरजे आकांक्षा जी का शो, वो भी आप इन मिस ना करेंगे प्लीज। और मेरा जो अब गाने का डिमांड होगा अब वो आपको इन लाइव शो में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब कहीं और यानी कि डिमांड करने का समय नहीं मिल पा रहा है।

0: बिल्कुल याद रखियो, चार अक्षर प्यार के, भूल ना जाइए बिल्कुल। और फीडबैक भी आए हुए हैं मेरे पास। ओके जी, और देवराय लिखते हैं थैंक यू सो मच, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: खुदी को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, कि खुदा तुमसे पूछे बता बंदे तेरी
0: रजा क्या है। बिल्कुल सही कहा अजय भगत जी आपने। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि अमन जी प्रोग्राम से मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अश्विंदर पाल जी जुड़ चुके हैं यानी पंजाब से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं भोला जी। और जितेंद्र जी लिखते हैं शानदार डिमांड है। और ये फीडबैक क्या कहती है।
2: हेलो,
0: बोलिए।
2: अभी जो आपने सॉन्ग सुनाया कागज कलम दवातला, वो भी काफी बेहतर सॉन्ग था। और आज गोविंदा जी के सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं, और मैं ये गाना सुनाना चाहती
0: हूँ। बोलिए बोलिए।
2: कागज कलम दवातला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं।
0: अच्छा।
2: दिल क्या तू जा भी मांगे तो दे दूं ये पहला काम करूं। सर, आज सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं, गोविंदा जी के ऑल सॉन्ग सुपर हिट हैं। थैंक यू,
0: धन्यवाद। और उनके बाद यहाँ पे सुनील कुमार जी लिखते हैं कि याद रखियो चार अक्षर प्यार के, बहुत ही अच्छा गाना लगा है सुनने को। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि झक्का डिमांड है जी, बिल्कुल। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है जी, बिल्कुल। और नंदलाल जी लिखते हैं मेरा गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अमन सर जी। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि याद रखियो चार अक्षर प्यार के, लव से छोटे हैं मगर इनमें पूरी एक मोहब्बत की दुनिया बसी है जी, बिल्कुल सही कहा भाई, इन प्यार। वैसेम डी फैज जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि याद रखियो चार अक्षर वाला गाना बहुत अच्छा लगा है। और कैदल झका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा डिमांड है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और आत्माराम जी लिखते हैं अमन जी यानी कि कल के प्रोग्राम के बारे में जानकारी जी, मैं बता दूं कि कल होगा शाम यानी शाम 6 बजे से 1 शाम वतन के नाम का शो यानी कि मेरा प्रोग्राम होगा। और 11 बजे से होगा आरजे वंशिका जी का शो यानी म्यूजिक मस्ती। और यानी कि पौने 5 बजे से पौने 6 बजे तक आरजे आकांक्षा जी का शो होगा। ओके, और 6 बजे से मेरा शो होगा। ओके, तो मेरा जो शो होगा वो देशभक्ति स्पेशल होगा। ओके, अब मैं बता दिया। और अगला जो डिमांड है आरिफ सिंधी जी का सुनते हैं।
3: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से। आज के गाने के बोल रहेंगे महबूब सनम तुझे मेरी कसम।
0: अच्छा अच्छा।
3: फिल्म का नाम है किस्मत, गाया हुआ है उदित नारायण जी, साधना सरगम जी। डेडिकेट रहेगा अमन सर जी आपको।
0: थैंक यू।
3: आपकी सुंदरता की मूरत जी को, वंशिका जी को, परमार सर जी को, आकंसा जी को, सोनी जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को।
0: ओके।
3: मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, शुक्रिया।
0: एंजॉय कीजिए।

0: बहुत सारे फीडबैक आए हूँ, माय गॉड मैं क्या करूँ यार। और यहाँ पे गजल अंजलि ने गा रही सिंधी जी के पसंद, बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद। और नंदलाल जी का भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और एमडी परवेज आलम जी जुड़ चुके हैं रफीगंज से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और लिखते हैं कि गोविंदा पर फिल्माए हुआ गाने बहुत ही शानदार लग रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सुन के। और अजय भगत जी लिखते हैं कि फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, और प्रोग्राम अमन जी का मजा लीजिए। अच्छा जी, और यहाँ पे नामदेव जालटे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है नामदेव जालटे जी। और मोहन भाई लिखते हैं कि महबूब सनम तुझे मेरी कसम गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और एम डी फैजी लिखते हैं कि शानदार सुपरहिट गाना है, ओके जी। और आत्माराम जी लिखते हैं कि हमारे आरिफ सिंधी जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। निशांत राय बोले लिखते हैं कि वाह क्या झक्कास गाना है, मजा आ गया सुन के। दत्ताक्रम जी लिखते हैं कि नमस्कार नमस्कार जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ये क्या कहती हैं,
1: हेलो सर
0: बोलिए।
1: स्टार्टिंग में किसी ने एक सॉन्ग सुना था जो कि मैं वो आधा ही सुन पाई थी। उस गाने के बोल थे कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, वो सॉन्ग मैं सुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा जी।
1: तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है,
0: अभी याद आया है।
1: क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हसी है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था, और जिसने भी इस सॉन्ग की डिमांड करी थी उनका नाम नहीं पता,
0: नाम सरोजी शेट्टी था उनका,
1: इतना सुंदर मतलब है सुनाने के लिए।
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपको भी। और आपको रह रहा क्या आ रहा है यार, माय गॉड। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन जी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या की आपको और सभी दोस्तों को शुभकामनाएं, धन्यवाद, ओके जी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि महबूब सनम तुझे मेरी कसम गाना बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। अशोक पाल जी लिखते हैं कि कुछ गीत कानों से नहीं सीधे दिल से सुने जाते हैं, उन्हीं में से ये गीत है जी, बिल्कुल। और काजल झका जी लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत ही प्यारा है। और अर्के रवि जी लिखते हैं कि तेरी सादगी को निहारने का दिल करता है, लिखते हैं कि तेरी सादगी को निहारने का दिल करता है, और तमाम उम्र तेरे नाम करने का दिल करता है, एक तुम ही हो जिस पर यानी दिल फिदा है, वरना इस दिल का हर यानी कि किसी पे मरने का इरादा नहीं है। अच्छा, इसी बात पर मुझे यानी कि नाम वाला गाना प्ले करना पड़ेगा, सहिता सिन्हा जी का, वो सुनना चाहती हैं कि नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: अब तो जब याद आ गई तब तो बुलाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, फिलहाल फीडबैक शामिल करता हूँ और मिसाल अंगद जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी फीडबैक।
1: हेलो अमन सर, अभी जो गाना आपने सुनवाया कुछ कुछ होता है, तो बहुत अच्छा गाना लगा मुझे। मैं कार्यक्रम पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, लेकिन अमन सर जी जब फीडबैक देता हूँ तो जब मोबाइल की स्क्रीन लॉक होती है फिर आगे का फीडबैक रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। पहले हो रहा था, लेकिन जब से मैंने अपडेट कर दिया है तब से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मेरा गाने की वॉइस कुछ आधी ही आपको पहुंच गई है, इसलिए अमन सर जी वो प्रॉब्लम जल्दी शॉर्ट आउट कर दीजिए। धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद देते हैं आपको। और देवराज जी लिखते हैं कि यानी कि तेरे चेहरे की चमक से लगा बिजली बिल ज्यादा आ गया। और ओके जी, पेट्रोल महंगा हो गया है बिल्कुल। और अपामत कुमार लिखते हैं कि लाजवाब बेहतरीन डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और गजानन लिखते हैं कि सहिता सिन्हा जी के पसंद का गाना, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त याद आने लगे, मजा आ गया सुन के गाने को, धन्यवाद देते हैं। और प्रियंका जी क्या करती हैं,
2: सर सभी सॉन्ग इतने अच्छे हैं कि स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन गाने ही पढ़ रहे हैं। अच्छा। ये गाना भी बहुत अच्छा है।

0: सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और और और और ये क्या कहते हैं,
2: वेरी गुड इवनिंग आपके अमन।
1: गुड इवनिंग,
2: ब्यूटीफुल प्रोग्राम, ऑल द न्यू सॉन्ग वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच, आई एम लिसनिंग।
1: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और ये फिर बैठ
3: आरजे अमन सर जी, अरे शिंदे जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका भी। और रवि जी, अरे रवि जी, जिससे मोहब्बत की अपनी एक जुबा होती है, ये वो एहसास है जो बिना कहे ब्याह होती है, लाख छुपाओ इस दुनिया से मगर इनकी खुशबू तो आंखों से ब्याह होती है, आहा क्या बात है। और निशांत राय बोल लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, शानदार प्रसंग के लिए धन्यवाद देते हैं। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि अमन जी आज मेरा दोस्त यानी कि पर्वत राय सॉन्ग ने कोई नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। और ये फीडबैक,
4: अस्सलामुअलैकुम अमन सर जी, आपने मेरी पसंद का गाना प्ले करके मुझे सुनाया, आपका तहे दिल से शुक्रिया, और जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
1: धन्यवाद आपका भी। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि वक्त बेवक्त यादों के सिलसिला यूं ही चलता रहा, और दिल यानी कि तुझे भूलने की कोशिश करता रहा, और तेरा ख्याल लौटता रहा। अच्छा ओके, ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं ना।

ओके जी, अच्छा हो गया, इतना ही था, मुझे लगा कुछ और बोलिएगा। ओके, और यहाँ पे शिल्पा बेन लिखते हैं कि नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, गाना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। और रणवीर सिंह जड़ाला लिखते हैं कि अमन जी, चलो अमन सर जी हम आपके प्रोग्राम से चलते हैं, क्योंकि मैसेज भेजने से क्या फ़ायदा जब आप सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, ये गाना अच्छा लगा, आपने कौन सा सवाल किया है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आपकी बात समझ में नहीं पा रहा हूँ मैं। ओके, देवराज जी लिखते हैं कि यानी कि तेरे चेहरे की चमक से लगा बिजली बिल ज़्यादा आ गया है, और दिल तो चाहता है कि तुम्हारे पसंद आना पर यानी कि क्या करें पेट्रोल महंगा हो जाना। मोहन नवाज जी लिखते हैं कि सुपरहिट सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। अशोक कुमार लिखते हैं कि नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, सिंधु फिल्म का शानदार गाना, 1988 के पैदा नंबर 3 पे बया था और 1987 में 19 पे बया था जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि असली हीरा मिलने का एकमात्र स्थान रेडियो हॉटस्टार, धन्यवाद देते हैं आपको। ओम नारायण जी लिखते हैं कि अमन जी, अच्छा मैसेज पूरा पढ़ दो, लिखते हैं कि अमन जी आज मेरा दोस्त यानी पर्वत राय यानी सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं डाल पाया क्योंकि उनका मोबाइल टूट गया है, बहुत उदास है, यानी कि पर्वत जी बहुत उदास है। अच्छा, पर्वत जी के लिए मैं कुछ यानी कि करूँगा, अंत में एक गाना उनके लिए मैं यानी कि प्ले करके जाऊँगा अपने तरफ से। ओके, इतना मैं कर सकता हूँ। ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ किनका, यानी काजल झक्का जी का, सुना चाहती है सीतामढ़ी बिहार से, या सताए तेरी नींद चुराए अब दिल ना लगे दिल भर, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल याद सता है तेरी नींद चुराया अब दिल ना लगे दिल बैग बहुत सारे फीडबैक भी और इट्स कुमार जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम करते हैं इट्स कुमार जी लिखते हैं बहुत ही बेहतर पेशकश यू बिना बादल बारिश नमस्कार कबूल करें नमस्कार नमस्कार एंड वेलकम है भाई कुमार जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी और ओम नारायण जी लिखते हैं कि थैंक यू ओके जी वेलकम है आपका भी और साथ ही साथ हमारे गजानंद जी लिखते हैं काजल झक्का जी के पसंद एकदम बेहतरीन लाजवाब लगी है धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं इनकी भी सुन लेते हैं
1: जय अमन सर जी काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
0: वेलकम थैंक यू सर ओके और यहाँ अनिल कश्यप जी लिखते हैं शानदार डिमांड है ओके जी और अशोक कुमार लिखते हैं कि गोविंदा और कृष्णा कपूर पर बेहतरीन जोड़ी पर फिल्म वाला जवाब गीत सुनने को मिला मजा आ गया सुन के इस गाने को और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि क्या कहते हैं कि अच्छा वो वहाँ पे तो वहाँ पे रिक्वेस्ट है जब आना होगा तो आ जाएगा टेंशन मत लीजिए और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं और अशोक पाल जी लिखते हैं कि या सताए तेरे नींद चुराए वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है और लिखते हैं कि मोहब्बत में ये बेचैनी भी यानी कितनी हंसी लगती है ना जी बिल्कुल लगती होगी आपको एक्सपीरियंस होगा इसके बारे में मोहन वाले लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए रवि जी लिखते हैं कि बंजर जमीन पर गुलाब का फूल खिला दिया दिल में जल रही यानी दिल में जल रही वो जख्म का आग बुझा दिया रेडियो हॉटस्टार का शुक्रिया कैसे करूं गोविंदा जी का हर गाने आज माहौल बना दिया क्या बात है निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है और ओके और लिखते हैं हमें इष्ट कुमार जी के 7 से 8 बजे के बीच हमारे इन पलों को बेहद खास बना देते हैं ओ थैंक यू सो मच भाईजान अगला जो डिमांड है हमारे बहुत से दोस्तों का है जिसमें है हमारे बता दूं कि अशोक देशमुख जी हैं सर्वेश भगत जी हैं आत्माराम जी हैं और प्लस यानी कि इसमें दत्तक्रम जी भी हैं और सैयद यूनुस जी भी हैं यानी 5 दोस्तों का डिमांड है तो पहले हम अशोक देशमुख जी का ही सुन लेते हैं धन्यवाद अशोक देशमुख जी कहाँ गए जी
2: नमस्कार अमन सर
0: नमस्कार
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख आज का थीम है स्टार ऑफ द वीक तो गोविंदा पर फिल्माए गए गीत भेजना है तो मुझे एक गीत सुनना है फिल्म का नाम है कुली नंबर 1 और गाने का बोल है आ जाना जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना ये गीत सबसे पहले आपको
0: थैंक यू
2: और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर धन्यवाद
0: ओके धन्यवाद और इसी गाने में जैसे कि शामिल है हमारे सर्वेश भगत जी इनका ऑडियो सुनते हैं
1: आरजे अमन सर जी सुसन दया नमस्कार नमस्ते जी हमारा आज फरमाइश का फिल्म है कुली नंबर 1 गाने का बोल है जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना हॉट स्टार जो सबको दी बना बना दे सभी बड़े को प्रणाम सभी छोटे को आशीर्वाद हम सर्वेश भगत हजरत दाहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं हमारा परिवार सतीश भगत हेमंत कुमार वर्ष स्वरूप भगत आनंद शिकरानंद प्रकाश सोनी कुमार अनु कुमारी सूरज कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख जी आत्माराम पाटिल जी सैयद दिनु जी आर जे अमन सर जी सुंदरता की उम्र जी आर जे आकांक्षा जी आर जे वंशिका जी आर जे रत्ना जी आर जे एम एस परमार जी और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल सभी को सुन दीजिएगा जयराम जी
0: ओके जी तो एंजॉय कीजिए गाने को

0: बिल्कुल, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, और बहुत सारे फीडबैक भी आ गया मेरे पास। और जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ ये प्रियंका जी क्या कहती हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
1: हेलो
0: जी,
1: अमन जी, ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा था। या सताए तेरी नींद चुराए, अब बिन न लगे तेरे, अब दिल न लगे तेरे बिन, आ गले लगा ले मैं।

0: गजानन जी लिखते हैं कि आत्मानाम जी, अशोक देशमुख जी, सरोज भगत जी, सभी के पसंद शानदार लगे, सभी को धन्यवाद। और आत्मानाम जी लिखते हैं दिल से शुक्रिया अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और काजल झका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा भी गाना बजाने के लिए, और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों का डिमांड बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं सभी को। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी मेरी बीवी बोल रही है कि तुमने मेरी कभी इतनी तारीफ नहीं की जितनी रेडियो और रोज करते। थैंक यू सो मच मोहन जी लिखते हैं कि आ जाना गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं वाह वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। ओम नारायण जी लिखते हैं कि मेरे दोस्त अजय भगत जी मेरा स्वागत इस भीषण गर्मी में गर्म पानी से स्वागत किया, अच्छा ये बात है क्यों भाई क्या हो गया ऐसा। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि जब दिल ना लगे दिलदार गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। आर्य सिंधु जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है, और मेरे मैसेज इनबॉक्स में मैसेज नहीं जा रहा था, यानी क्यों वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे लॉगिन कीजिए, अगर लॉगिन का पासवर्ड भूल गए हैं तो मैं यहाँ से रिसेट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि यानी कि प्यार के एहसास को इन ब्याह करने वाला एकदम झकास गाना है जी। बबीता जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: नमस्ते अमन सर जी, नमस्ते। हमारे तरफ इधर बारिश शुरू हो गई है और नेट का भी भाग रहा है आ रहा है, ऐसे होने लगा प्रॉब्लम हमारे तरफ भी, और गाने सारे चल रहे हैं ग्रुप का बढ़िया पुली नंबर वन का, सब अपने गाने में शामिल किए सब दोस्त को धन्यवाद।
0: ओके धन्यवाद आपका भी। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क तो मेरे हाथ में नहीं है ना। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही धन्यवाद ये इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए मिली जुली दोस्तों का। और अशोक कुमार लिखते हैं कि कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में बेहतरीन गाना सुनने को मिल गया, मजा आ गया है सुन के। और सहिदा सिन्हा जी लिखते हैं कि यानी कि पूरी नंबर वन का शानदार गीत सुनने में मिला, मजा आ गया सुन के। और दत्ता जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ये कुड़ी नंबर वन का गाना मुझे मस्त लगा है, आज के इतने गाने में बेहतरीन मैं क्या ही बताऊं, ये फीडबैक सुनते हैं फिलहाल।
2: आदरणीय सर्वेश भगत जी, आदरणीय आत्माराम पाटिल जी, आदरणीय अशोक देशमुख जी, हमारे मित्र दत्ता कदम जी और हमारे मित्र सैयद इनू जी, इन पाँच दोस्तों के आपने मिलजुली फरमाई चलाई सर, तो मैं उनको धन्यवाद बोलूँगा हमें अपने गीत में याद करने के लिए और इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी को, आप पांच दोस्तों को, आपने हमें अपने गीत में याद किया। और आदरणीय परमार जी, उन्होंने हमारे गीत पर जो स्पेशल फीडबैक दिया उनको मैं दिल से धन्यवाद और शुक्रिया बोलना चाहूँगा, इतना अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया और फीडबैक के माध्यम से मुझ पर उन्होंने अपना प्यार बरसाया, मैं दिल से शुक्रिया बोलूँगा आदरणीय परमार जी आपको, आपने हमारे गीत पर फीडबैक दिया। मैं फुले भक्त संजू भाऊ, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, आरजे अमन जी के साथ।
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपको भी। और देवराज जी लिखते हैं कि भाई यानी पर्वत जी को यानी कि प्रियंका जी मेरे भैया भैया अच्छा भैया भाभी है दोनों का एनिवर्सरी 4 दिन बाद है, हाँ तो उनके लिए आप स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके अगला जो डिमांड है हमारे किनका है, जरा अभी आने वाला काम हो रहा है, एमडी जलील जी का शायद मेरे ख्याल से, हाँ एमडी जलील जी का है, आपके आ जाने से बिल्कुल दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल बताओ इतने दिन तुम कहाँ रही है? ओके, और यहाँ पे बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आरजे मानसा जी, एमबी जलेश जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: वेलकम है जी आपका। और यहाँ पे शमशाद हुसैन जी जुड़ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, बहुत बहुत वेलकम है आपका, बहुत दिन बाद आए। और मेराज जी भी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है दोनों दोस्तों का। और ये फीडबैक क्या कहती है ये?
2: हेलो,
0: बोलिए।
2: सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और मैं ये सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ।
0: कौन सा?

0: गुप्ता जी का बहुत ही अच्छा लगता है
1: जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि योर प्रेजेंस इन द स्वीटेस्ट रीजन फॉर ए हैप्पी हार्ट। अच्छा, आजकल बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं आप। अशोक कुमार लिखते हैं कि मैं से मीना सिन्हा साथी से युवा लगाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ये गीत 1988 के पैदान नंबर 7 पे गाया था मोहम्मद अजीज और शारदा संगम की मधुर आवाज में। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और गजानंद जी लिखते हैं कि अजय भगत जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही शानदार, वेरी नाइस सॉन्ग है। और मोहन राय लिखते हैं कि ये कितने दिनों के बाद मिले हो, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। और ये फीडबैक
2: अमन जी, आपने मेरा गाना बजाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोतागण को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और
1: धन्यवाद आपका भी। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि इतने दिन तुम कहाँ रहे, गाना मुझे अच्छा लगा है, ओके। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि अजय भगत जी कल हमेशा से लाजवाब गाना रहता है, यानी कि टॉप वन पे बहुत ही प्यारा गाना है, दिल को हिला डाला। अच्छा जी, और ये क्या कहते हैं
3: अमन भैया, जो दो गाने बैक टू बैक आए तो उनमें दिल बहल जाता है मेरा आपके आ जाने से, ये भी सटीक लाइन है, वो भी आप ही के लिए है, जब आप आते हैं तो बाहर आ जाती है।
1: अच्छा, धन्यवाद।
3: और दूसरे गाने में जो लाइन है कि एक पल भी ऐसा ना रहा मैंने तुझे याद ना किया हो,
1: बिल्कुल। तो शायद ये मतलब एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए पूरे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, इसको मैं ठीक कर दूंगा अब अगले अपडेट में। अभी एक अपडेट आने वाला है, वो यानी कि कॉलिंग वाला अपडेट, यानी उसमें रेडियो पर ही आपको फ़ोन जाएगा, मतलब मैं यहाँ से कॉल लगाऊंगा तो रेडियो पर आपको आप यानी कि कॉल रिसीव यानी कर सकते हैं, ऐसा अपडेट आने वाला है, ऐसा फीचर्स भी आने वाला है। और अगर एप्लीकेशन में अगर ऐड आते हैं तो ऐड में अगर रेडियो बंद नहीं होगा, वो यानी वो मतलब कंटिन्यू यानी कि चलता रहेगा, आप उसकी वॉल्यूम को ऑफ कीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा लेकिन रेडियो चलता रहेगा। ये सभी फीडबैक्स मतलब यानी कि फीचर्स आने वाले हैं अगला अपडेट में, और दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द अपडेट आ जाए। रवि मौर्य जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
4: आरजे अमन सर जी, अजय भगत जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका भी। और नाम है इनका जफर रंगरेज, ये राजस्थान से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ओके, और रवि जी, आर के रवि जी लिखते हैं कि हाय, एक पल भी ऐसा ना गया मैंने तुझे याद ना किया हो, एक दिन भी ऐसा ना गया मैंने तेरा दर्द ना लिया हो, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वह हमारे अशोक कुमार जी का है, सुनना चाहते हैं मैं प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए। और जुड़ चुके हैं हमारे इशाक हुसैन जी, वालेकुम असलाम भाई जान, बहुत बहुत वेलकम कर।

0: बिल्कुल एमडी प्यार का पुजारी है और मुझे प्यार चाहिए, और एमडी फैजल ने जी बहुत ही प्यारा गाना भी है, और निशांत रायबोल जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड करे, थैंक यू सो मच। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन सर जी, जी एक जी। गाना और मेरा रह गया था, शायद उसे आप सुना सकते हो, तो इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। अच्छा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अगर सुना सको तो सुना सके, धन्यवाद।
0: ओके, मैं कोशिश करूंगा आपके गाने को प्ले करने के लिए। सही तस्वीर दिखते हैं कि हत्या फिल्म का लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और ये क्या कहते हैं इनकी सुनते हैं।
2: अमन सर जी, बहुत ही प्यारी डिमांड हमें सुनवाने के लिए, शुक्रिया।
0: ओके जी, और गजानंद जी लिखते हैं कि अशोक कुमार जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद ही हत्या फिल्म का गाना, शानदार लगा मोहम्मद अजीज की आवाज में। और सुनील कुमार लिखते हैं कि मैं प्यार की पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, मजा आ गया, दिल को दिल से धन्यवाद देते हैं इस गाने को सुनवाने के लिए। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और जफर रंगरेज राजस्थान से लिखते हैं कि अमन जी, आज तक आपने मेरी पसंद का एक्चुअली देखिए आप ये जो गाना भेजे हैं, ये मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, ये आज के थीम पर नहीं है, आज है गोविंदा जी, तो कैसे आपके गाने को मैं प्ले कर दूँ। आप हमेशा थीम से हट के गाना भेजते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, वो जो नहीं है, मतलब यानी कि नहीं नहीं मैं प्ले कर पाऊंगा, इसके लिए आई एम सॉरी। हाँ, आज के थीम पे गाना भेजते तो कोशिश करता कि आपके गाने को प्ले कर दूँ। ओके, अगला गाना सुनिए।
3: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आज के स्टार चॉइस में मेरी पसंद रहेगी फिल्म का नाम छोटे सरकार, और गाने के बोले कि चुम्मा तो मुझको उधार दे दे। इस गाने को पहले तो यह गाना अमन भैया आपको डेडिकेट है, आपकी सुंदरता की मूरत को, और MS परमार जी को, वंशिका जी को, आकांक्षा जी को, सोनू गौतम जी, प्रिंस पासवान जी, मुक्तिनाथ जी, सतीश शर्मा जी, परवेज अहमद जी, नेकलस जी, अरुण मंडल जी, और रणवीर सिंह जेठालाल जी, और रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा ये गाना डेडिकेट रहेगा, धन्यवाद।

0: बिल्कुल, यानी सब कुछ तो आप ही कहे, जो चाहिए वो ले लीजिए। और फिलहाल फीडबैक में ईश्वर भगत जी लिखते हैं कि तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, और तू दरिया सी ये लहर कौन से देखेगा, और तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, और तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा। ना ना, हम तो नहीं देखेंगे भाई, बस हम अपनी सुंदरता की मुरली जी को देखते रहेंगे। मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि हम भी यानी काम करते करते सुन रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि मैं प्यार की पुजारन वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि ये इज्जतदार मूवी का गाना अच्छा, ओके। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, बिल्कुल। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे गाना अच्छा लगा है। अशोक कुमार लिखते हैं कि एक चुम्मा तू बहुत ही लोकप्रिय गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया सुन के। और ये क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं अनिल कश्यप जी के मस्त मस्त मस्त सॉन्ग है। और ये
1: अमन भैया आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का शुक्रिया है फीडबैक देने के लिए। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से,
0: धन्यवाद देते हैं आपको। और सुनील कुमार यहाँ पे लिखते हैं गजन सुलकार जी के, सुनील कुमार जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद। ये फीडबैक।
2: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, एक से बढ़कर एक फरमाइश आपको मिली है और आप हमें सुनवा रहे हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया, और फरमाइशकर्ता का भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार, रेडियो हॉट स्टार सुनते रहो अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जफर रंगदेज जी लिखते हैं कि अरे भाई मैं आपसे कैसे बताऊं कि आज गोविंदा पर फिल्माए हुए गाने शामिल होंगे, ओके गोविंदा पर भेजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा। विष्णु चंद जी लिखते हैं कि एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सभी गाने बहुत ही अच्छे अच्छे यानी कि लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और लिखते हैं कि अमन सर जी आज के सभी गाने बहुत अच्छे हैं, और क्या क्या मैं आपसे बताऊँ, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और थोड़ा यानी ध्यान यानी कि मेरा यानी कि पूजा पर है, क्योंकि हम यानी कि पूजा करते हैं और ज़्यादा समय वहीं पर यानी देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा गाना कम सुन पाते हैं। कोई बात नहीं है, जब आपको समय मिले उतना ही आप सुनिए, लेकिन पहले यानी कि पूजा करना भी ज़रूरी चीज़ है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, ओके ओके, तो ये मतलब ये कायनात जी गाना सुनना चाहती हैं, और ये गाना है सुनो ससुर जी अब जी छोड़ो।

बिल्कुल दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ। और यहाँ पे ये लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही शानदार गाना लगा, मजा आ गया सुन के, ओके जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि यानी कि कायनात जी की डिमांड, सुनो ससुर जी अब जी छोड़ो, सुनकर मजा आ गया है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि नशा करने वाले में से एक ही बात बोलूंगा कि तुमने रेडियो हॉटस्टार सुन लिया तो सारा नशा भूल जाओगे, और क्योंकि रेडियो हॉटस्टार दीवाना बना देते हैं, क्योंकि रेडियो हॉटस्टार में जो नशा है वो गीत में है, वो कभी उतरने वाला नहीं है। अच्छा शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये सुनो ससुर जी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं कैनाथ जी को। रणवीर जी लिखते हैं कि ये कैनाथ जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनो ससुर जी। और संसाद हुसैन जी लिखते हैं कि सुनो ससुर जी जरा जरा यानी लिखते हैं कि सुनो ससुर जी जरा यानी तलखी कम कीजिए, अधिकार हमारा है और यानी कुछ इधर भी ध्यान दीजिए, हर बात पर यूं जो यानी तेवर बदलते हैं आप, और कुछ रुतबा हमारा भी है ये बात समझ लीजिए जी, अब तो भगाना पड़ेगा ना। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना सुनने को मिला है, मजा के सुन के। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे ओम नारायण जी का है, ओम नारायण जी सुनना चाहते हैं मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और सबसे पहले तो मिराज जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। लाजवाब गीत।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अभिषेक तिवारी जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ओम नारायण जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। मजा आ गया गाना सुन के और गाना इनको अच्छा लगा है। कपूर चंद जी लिखते हैं सुपर से ऊपर वाला गाना है। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि जक्कास गाना एकदम। और अजय भगत जी लिखते हैं कि ओम नारायण जी क्या तो भाई आपने तो यानी लाइफ स्टोरी ही बना दिया है। मजा आ गया सुन के अमन जी। और अगला जो डिमांड है वो आज के यानी बर्थडे गर्ल जी का है, यानी कि खुशबू जी का। और खुशबू जी ये गाना सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं, तो इन्जॉय कीजिए इस गाने को। और एक बार आपको फिर इससे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्जॉय कीजिए अपने गाने को।

0: वेलकम बैक। और बहुत सारे यहाँ पे रवि जी लिखते हैं कि आपके अंदाज पर हम फिदा हो गए और असुरों की महफिल में आकर गुमनाम हो गए और थोड़ी सी मिठास घोल दो इस खामोशी में। अरे जनाब जरा हमारा मन पसंद। ओके जी, और ये फीडबैक।
1: मैं संग तेरे भाग चली मेरे घर से।
0: अच्छा।
1: मैं संग तेरे भाग चली मेरे घर से, मेरे बाप के डर से, ये मेरे बाप के डर से। सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और सभी सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू।
0: ओके वेलकम है आपका भी। और आदित्य सिंह जी लिखते हैं कि अमन सब जी भागम भाग मत कीजिए। हाँ सही कहा आपने। वैसे निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि बुलबुला रे बुलबुला गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि बुलबुला रे बुलबुला ये गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बुलबुला रे बुलबुला ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और इसके बाद अगला जो डिमांड है वो राधे जी का है। राधे जी सुनना चाहते हैं एक नया।

निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि एक नया आसमान वाला भी गाना बहुत ही प्यारा है, और गजानंद जी लिखते हैं बुलबुला रे बुलबुला वाला गाना बहुत ही अच्छा लगा है, और खुशबू जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि टू गुड सॉन्ग है अच्छा, और सरसाद हुसैन जी लिखते हैं कि दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता है, हर रास्ते का अंजाम नहीं होता है, अगर निभाना चाहते हैं दोनों तरफ से तो कोई रिश्ता भी नाकाम नहीं होता है। ओके जी, और अशोक पाल जी लिखते हैं कि मैं भी आ गया हूँ दोबारा, ओके वेलकम है। इसी बात पगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो किनका है जरा मैं बता दूँ, अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक तिवारी जी सुनना चाहते हैं ये चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारे, इंजॉय द ट्रैक।

0: खुशबू की तुम बात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर और तुम मेरे साथ हो। निशांत राय बोले लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन जी आपका प्रोग्राम शाम लेके आती है और रात इसे आकाश तक पहुँचाती हो, थैंक यू सो मच आपका। और ये फीडबैक
1: अर्जय अमन सर जी, अभिषेक तिवारी जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा चंदा सितारे। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि दिस सॉन्ग ब्यूटीफुल्ली कैप्चर द जॉय ऑफ समवन यानी कि प्रेजेंस। ओके शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि इश्क में दिल को रुलाना छोड़ दिया, हमने भी उस बेवफा को भुलाना छोड़ दिया, जख्म इतने मिले कि अब दर्द भी नहीं होता, हमने भी अब तो मुस्कुराना छोड़ दिया। ना ना भाई मुस्कुराइए, आप रेडियो हॉटस्टार सुन रहे हैं। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, मजा आ गया सुन के। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मस्त गाना चंदा सितारे भी तुम्हारे। और काजल झक्काश लिखते हैं कि एकदम झक्काश गाना, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि अभिषेक तिवारी जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये गाना यानी कि चंदा सितारे वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ हमारे सरफराज पटेल यानी कि सरफू भाई का।

0: ओके जी, मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और पहला तो ये
1: आरजे अमन सर जी, सरफराज पटेल जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और गजन अंजलि सरफराज जी की पसंद बहुत शानदार लगी, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये वाला गाना बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद देते हैं। और संसार जी लिखते हैं कि ये खामोशियों को भी सुन लिया करो कभी, आप अपनों के संग थोड़ा वक्त बिता लिया करो और जिंदगी की भागदौड़ में बहुत थके हो तुम, अपनी खुशी के लिए मुस्कुरा लिया करो। इसी बात अगला जो डिमांड है आरजे वंशिका जी का, सुनना चाहती हैं सोचो ना, जरा सोचो ना, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल बहुत ही प्यारा गाना है और फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं और कपूर चंद जी लिखते हैं कि भाई देखिए आपने जो गाना भेजा है वो शायद और कोई भेज सकते हैं क्योंकि उसका टाइमिंग निकल चुका है, क्योंकि जो अब यानी लड़की पटाने वाला काम जो था वो मतलब हो चुका है, अब अभी गाने आगे बढ़ चुके हैं यानी स्टोरी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए ऐसे गाने की डिमांड कीजिए कि जो अभी शामिल हो सके, अब जो जो नहीं होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। शमशाद जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा, लवली सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच और यानी कि हैप्पी बर्थडे यानी खुशबू जी, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको, आपकी हजारों साल। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और सर्वेद भगत जी,
1: आरजे अमन सर जी, आरजे वंशिका जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर, धन्यवाद,
0: वेलकम जी आपका भी। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग है। और सरफराज पटेल लिखते हैं कि थैंक यू सो मच भाईजान, आपने मेरा गाना प्ले किया, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और प्रमोद जी लिखते हैं कि ऑसम चॉइस है। और अजय भगत जी लिखते हैं कि हाय वंशिका जी की फरमाइश लाजवाब लगी है। और देवराज जी लिखते हैं कि अमन जी देखिए अब मुझे पता नहीं आपका कौन सा गाना है, अच्छा वो देखता हूँ, वो अब तो जाकिर खान जी का फिलहाल मैं गाना प्ले करता हूँ, उसके बाद जाकिर जी एंजॉय कीजिए गाने को।

0: बिल्कुल, और फीडबैक भी आ गया है। देवराज जी लिखते हैं कि तुम मुझे भूल जा, मैं तुझे भूल जा। जी बिल्कुल। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जैकेट जी की चॉइस, लाजवाब डिमांड, थैंक यू सो मच। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं, अमन जी मच्छर तो यानी काट रहे हैं फिर भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। अच्छा जी, धन्यवाद है आपका भी। और यहाँ पर निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं जन्म जन्म के साथ निभाए, बहुत ही प्यारा गाना है। और ये फीडबैक,
1: नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आरजे वंशिका और मैं भी कार्यक्रम को सुन रही हूँ। कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन चल रहा है आरजे अमन जी, और आपने मेरा गाना प्ले किया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और जिन लिसनर्स ने फीडबैक दिया उन सभी को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और खुशबू कुमारी जी, अगर आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आपको भी जन्मदिन की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप जीव हजारों साल और दिन हो 50,000 अनलिमिटेड, बहुत सारे दिन हो, और आप मतलब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और जन्मदिन की बहुत बधाई है। हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन, एंड आज मैं थैंक यू सो मच अगेन।
0: ओके, और यहाँ पे कपूर चंद जी लिखते हैं कि ओके और यहाँ पे अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो रणवीर सिंह जेठालाल जी का, ये सुनवाना चाहते हैं, तू पागल प्रेमी आवारा, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल तू पागल प्रेमी आवारा और गजानंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा है, धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुन लेते हैं। क्या कहते हैं प्रियंका जी?
1: जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ।
0: अच्छा जी।
1: मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की

0: नो कॉल प्लीज।
1: सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे जाकिर खान जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी मेरा डिमांड को प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि ये तो लिखते हैं कि तू पागल प्रेमी आवारा वाला गाना लाजवाब लगा है। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि भाई मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। भाई यूसुफ हुसैन जी प्लीज नो कॉल, नहीं तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, प्लीज आप मुझे कॉल ना करें। और यहाँ पर राहुल पासी जी लिखते हैं कि शोला और शबनम का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और रवि जी लिखते हैं आर के रवि जी के यानी कि कभी फुर्सत मिले तो आकर देख लेना मेरी वीरानियों को, और तूने जिस चिराग को बुझाया था वो आज भी धुआं दे रहा है, और आंसुओं की एक अजीब दास्ता है मेरे दोस्त, ये खुशी में बहते नहीं है और गम में रुकते नहीं। अच्छा ओके जी। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि अमन जी आज तो मैं देखता हूँ, फिलहाल अगला जो डिमांड है अनिल कश्यप जी का है, सुनना चाहते हैं वो आँखें क्या जिसमें सूरत

0: लिखते बहुत ही लाजवाब गाना, वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। राहुल पासी जी लिखते कि वो आखिर क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें, वह क्या गाना है भाई, ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और प्रियंका जी क्या कहते हैं?
1: हेलो अमन जी,
0: जी
1: अभी आपने जो सॉन्ग सुनाया था तू पागल प्रेमी आवारा, वो सॉन्ग मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का हमारा, तू

0: थैंक यू।
1: ओके जी, और अपर्मोद कुमार लिखते हैं कि अनिल कश्यप जी का डिमांड ऑसम लगा है, और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और ओके अच्छा ओके, और यहाँ पे रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। इसी से बात अगला जो डिमांड है वो करीब यानी कि तीन दोस्तों का है, एक हमारे यानी नाम है मतलब इन विष्णु चंद्र जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं और नामदेव जालटे जी हैं, ये सभी सुनना चाहते हैं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक। इंजॉय कीजिए।

और इस गाने में दो ही दोस्त हैं, एक है हमारे राधा कृष्ण गोप जी और नामदेव जाल्टी जी, दो दोस्त हैं इसमें। और चूंकि उनका अलग अलग गाने का डिमांड आया हुआ है, हमारे इन विष्णु चंद्र जी का अलग गाने का डिमांड है, सरकारी लोग खटिया जाने लगे, वो देखता हूँ समय मिलता है तो प्ले करूँगा।

बिल्कुल छोड़ेंगे ना हम तेरे साथी। और दीपक कुमार गायकवाड जी लिखते हैं, अमन जी गर्लफ्रेंड की तारीफ करना नहीं आ रहा है तो रेडियो हॉट स्टार डाउनलोड कर लो, अमन जी के प्रोग्राम सुन लो और यानी कि तारीफ खुद ब खुद आ जाएगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पे निकला जी क्या कहते हैं सुनते हैं भाई। निकला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है आपके ऑडियो में, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई होगी। रणबीर जी लिखते हैं कि छोड़ेंगे ना हम ये गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरे साथों साथी मरते दम तक, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि यानी कि प्रियंका जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद देते हैं उनको। और लीजिए आ गई प्रियंका जी, सुन लीजिए इनका फीडबैक।

ओके धन्यवाद देते हैं आपको और प्रमोद कुमार लिख देंगे छोड़ेंगे ना हम तेरे साथी और साथी मरते दम तक सभी की पसंद शानदार लगी है। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी। और और और, और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। काजल झका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे शाहिद अंसारी जी का है और शाहिद अंसारी जी इंजॉय कीजिए गाने को।

अब इस गाने को यानी कि सॉन्ग ऑफ द डे नहीं बनाएगा तो क्या करेंगे बताइए। शाहिद जी सच में यार मजबूर कर देते हैं आपको सॉन्ग ऑफ द डे बनाने के लिए। बहुत बहुत आपको बधाई हो इस गाने की, आज फिर यानी विनर बन गए। एक गाना और सुन

0: वेलकम बैक। सच में गाना बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई शाही जी। थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी, और ओम नारायण जी लिखते हैं सभी साथियों का डिमांड लाजवाब। और सच में ऐसे गाने होंगे तो मुझे फुल प्ले करना ही पड़ेगा, मजा आता है ना। कपूर चंद जी लिखते हैं बहुत ही सुपर सॉन्ग है जी, बिल्कुल भाई इसमें तो है, इसमें कोई। राहुल पासी जी लिखते हैं बहुत ही नाइस सॉन्ग है, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, साहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं, और सभी आदमी अपने अपने गाने में सभी को भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: हेलो अमन जी, सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, और अभी नाम तो याद नहीं है, भूल गए हम तो, कि किसी ने बोला कि प्रियंका जी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। हाँ। उनके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ।
0: हमारे गजन सलोकार जी हैं।
2: मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मेरा गाना वॉइस जो मैं मैसेज भेजती हूँ आप पूरा सुनाते नहीं हैं। ये शिकायत है मैं आपसे।
0: हाँ, एक्चुअली क्या है ना, वॉइस आपका वॉइस मैसेज बहुत ही लंबा होता है, मुझे उतने मतलब उसको मुझे कट करना पड़ता है ना, क्योंकि हाँ अगर आप यानी कि 30 सेकंड के अंदर भेजेगा तो नो प्रॉब्लम, आप यानी कि हर गाने में भेजेगा तो मैं प्ले करूँगा, लेकिन जो गाना आपका 1 मिनट से ज़्यादा होता है मैं उसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ जी। बिल्कुल ये शिकायत नहीं है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर भेज रही हैं तो उसको थोड़ा सा यानी कि कम करके भेजा कीजिए, अच्छा लगेगा। ओके, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शाहिद जी के पसंद सच में बहुत ही प्यारा था, और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है। ओके, और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि दिल यहीं कहीं खो गया है, बेहतरीन लाजवाब गीत सुनकर मजा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं घूमने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि 6 से 10 मैं कभी नहीं जाऊंगा। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों भाई, इतना कहां बिजी रहते हो, कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या? तो मैंने बोला नहीं भाई, गर्लफ्रेंड नहीं मिली है, मुझे मिला है रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। हाय हाय, थैंक यू सो मच। ओम नारायण जी लिखते हैं कि मेरी वाइफ कहती है रेडियो हॉटस्टार का जवाब ही कुछ और है। अच्छा, थैंक यू सो मच। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे बज रहे हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो शिल्पा बेन जी का है, वो सुनना चाहती हैं कहो तो जरा झूम अलबेला का।

बिल्कुल कहो तो जरा झूम लो, ऐसे गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और शमशाद जी लिखते हैं कि यानी कहो तो जरा झूम लो ग्रांटी के साथ मजा आ गया जी बिल्कुल। और सौरभ सिंह जी लिखते हैं लाजवाब डिमांड, मजा आ गया सुन के। और राहुल पाची जी लिखते हैं कहो तो जरा झूम लो मजलती बहारों में, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। गजानंद जी लिखते हैं कि कहो तो जरा झूम लो बहुत ही प्यारा गाना, धन्यवाद देते हैं। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद। अशोक पाल जी लिखते हैं कि दिस इज लवली रोमांटिक सॉन्ग। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और ओम नारायण जी लिखते हैं कि अपना ग्रुप है जो रेडियो हॉटस्टार का होश उड़ा दे, और मेरे यानी प्यारे साथी एक बार नाम जरूर ले लें, अजय भगत जी यानी पर्वत, आर के रवि जी और निर्मल जी और विकास जी और मीना जी, जो हम लोग रेडियो हॉटस्टार के दीवाने हैं। ओ थैंक यू सो मच। इसी बात अगला जो डिमांड है अशोक पाल जी का है, मखना सुनना चाहते हैं मेरे प्यार का रस जाना चखना। इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक और फीडबैक में मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और यहाँ पे मेरा जी लिखते हैं सुपर हिट लाजवाब सॉन्ग ग्रांटी के साथ मजा आ गया है। और अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं?
1: अमन सर जी, थोड़ा सा लेट फीडबैक दे रहा हूँ। मेरा गाना आपने प्ले किया और जितने भी लोग उस पर फीडबैक दिए सबको और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी से मैं कहना चाहूँगा कि सारे गानों पे उनका फीडबैक गाना गा के आ रहा है, मेरे गाने पे नहीं आया, ऐसा क्यों? मेरा गाना अच्छा नहीं लगा था क्या उनको?
0: अच्छा जी। और यहाँ जाकर जी लिख दें कि कहो तो जरा झूम लो, शानदार चॉइस है, मजा आ गया सुन के। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि रेडियो हॉट स्टार की चमक से चमक रहा है पूरा हिंदुस्तान और गा रहे हैं सब रेडियो हॉट स्टार के गाने, धन्यवाद देते हैं। और बलदेव राज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत दिन बाद जुड़े हैं। और मेरे दोस्त कहाँ हैं उनका तो आता पता ही नहीं है, पता ना कहाँ गायब हो गए एकदम बिल्कुल। राहुल पासी जी लिखते हैं कि मेरा प्यार का जरा चखना मखना, मजा आ गया गाना सुन के। और अशोक पाल जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अमन जी, मेरा गाना प्ले करेंगे, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं कि मेरे प्यार का जरा चखना वही मखना, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि मुझे गाना बहुत अच्छा लगा वही मखना। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और ओम नारायण राय जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक सभी की पसंद है। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है, शमशाद हुसैन जी सुनना चाहते हैं कि तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पटाने का।
2: अरे मिल गया परमिट, हा, हा, हा।

0: बिल्कुल तेरे डैडी ने दिया मुझे पवित्र पढ़ाने का और निशांत राय बुरुचली से बहुत ही लाजवाब गाना है, मजा आ गया सुन के। और ये क्या कहते हैं,
1: तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पटाने का, चल हट नट खट मैं नहीं पटने वाली तू झूठा जमाने का।
2: बहुत लाजवाब गीत अमन भाई जान संसाद भाई का।
0: ओके जी, और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि डैडी ने परमिट मिल दिया। जी जी बिल्कुल। और खुशबू जी लिखती हैं कि सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा बर्थडे को विश किया है। जी आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल और जिंदगी में आपकी वो हर वो खुशी मिले आप जिसके हकदार हो, और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आए और हर शाम एक सुकून दे दे, और आपके चेहरे पर हमेशा वो मुस्कान वो बनी रहे, बस हमारे ईश्वर से यही दुआ है। ओके जी, और यहाँ पर राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट डिमांड है, मजा आ गया सुन के। ओम नारायण राय लिखते हैं कि सभी साथियों को एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई, और तिरंगा ऊंचा सदा रहेगा, लहराता रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि थोड़ी शरारत ढेर सारा आकर्षण और रोमांस वाला दिल बेहद खूबसूरत गाना हुआ, ये मजा आ गया सुन के। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड है। अगला जो डिमांड है वो देवराय जी का है, देवराय जी सुनना चाहते हैं आंखियों से गोली मारे। हाँ दीवाने का।

0: बिल्कुल लड़की भी कमाल की है भाई, अच्छे से गोली मारे हैं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखेंगे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जा रहा है अमन सर जी, गोविंदा जी का सभी गाने एक नंबर करेक्ट चल रहे हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल, अच्छे से गोली मारे, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और ये फीडबैक,
1: चोरी चोरी चुपके चुपके मैं भी तुझ पे मरती थी,
0: अच्छा?
1: शाम सवेरे दिल कर जाने प्यार तुझे से करती,
0: क्या बात है,
1: सच्ची ये मायना मेरा दिल और किसी को चाहे ना।
0: ओहो,
2: ये गाना बहुत ही अच्छा था।
0: हाँ, ये फीडबैक आपका सबसे अच्छा था क्योंकि आपने शॉर्ट में दिया है, ऐसा ही चाहता हूँ ऐसे ही फीडबैक दिया कीजिए छोटा छोटा एकदम। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना लगा, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं। और रणवीर जी लिखते हैं कि अखियों से गोली मारे गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि दोज आई डोंट जस्ट लुक दे स्टील हर्ट, अच्छा। और गजानन जी लिखते हैं कि अखियों से गोली मारे कमाल का गाना लगा मुझे एकदम, मजा आ गया सुन के। शिल्पा बेन लिखेंगे थैंक यू सो मच अमन जी मेरी रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का गाना बहुत ही लाजवाब चल रहा है। प्रमोद कुमार लिखते हैं एकदम झक्कास गाना, झक्कास चॉइस, मजा आ गया सुन के। राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट डिमांड है, मजा आ गया। इसी बात अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि कपूर यानी कि चंद जी का है। कपूर चंद जी इंजॉय कीजिए इस गाने को।
3: देखो चाहे जिधर से देखो

0: ये लड़की नहीं ये बनारस की पान है, ये लड़की नहीं ये बनारस।
1: बिल्कुल, अब तो आंटी नंबर वन की बारी आने वाली है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आंखियों से गोली मारे गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और कपूर चंद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम सुनकर पता नहीं कब शाम से रात हो जाती है, सच में मालूम नहीं चलता है। और निकला जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: मिस्टर अमन,
1: यस सर,
2: इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू सिंग एवरी सेकंड टाइम सेम सॉन्ग, अदर पीपल आल्सो वेटिंग फॉर देयर सॉन्ग।
1: ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर फीडबैक। एंड राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये लड़की नहीं बनारस का पान है, जी बिल्कुल। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही नाइस सॉन्ग है। और अंजल कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर राहुल पासी जी का गाना सुनवाते हैं आपको, आंटी नंबर वन, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक और फिर बैक मेरे पास आए हैं। यहाँ पे शौर्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत दिन बाद आए हैं भाई, कहाँ रहते हैं जी। और राहुल पाजी जी लिख देंगे, अमन जी धन्यवाद देते हैं। और उनके बाद यहाँ पे निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, एकदम मजा आ गया सुन के। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि आंटी की बारी नंबर वन, ये गाना अच्छा लगा है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि बांधे कमरिया से साड़ी आई अब आंटी, गोविंदा की बारी, डांसर कोई नहीं जी, उनके जैसा डांसर कोई नहीं है। और आर्य सिंधु जी लिखते हैं, अमन जी आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, ओके जी, थैंक यू सो मच। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि आंटी नंबर वन बहुत ही बढ़िया गाना है, गोविंदा जी के गाने तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं, और यानी कि उनकी सभी फिल्में भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं, खासकर कॉमेडी वाला जी, बिल्कुल। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि नंबर वन आंटी नंबर वन सॉन्ग, अगला जो डिमांड है वो सुनीता गोप जी का है, सुनना चाहती हैं मस्ती मस्ती, तो मस्ती कीजिए थोड़ा।

0: बिल्कुल, और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, और यहाँ पे मिराज जी क्या कहते हैं सुनते हैं इनकी।
1: ओ रानी, ओ मेरी जान मन, सुनो दीवानी बोले ये मेरा मन। अरे ओ रानी, ओ मेरी जान मन, सुनो दीवानी बोले ये मेरा मन। मुझ पे तो छाई तेरे प्यार की।
2: बहुत लाजवाब गीत अमन भाई जान।
0: ओके, धन्यवाद देते हैं आपको। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ओ मेरी जाने मन वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, मस्ती मस्ती। धन्यवाद देते हैं कि चलो इस लड़ाई का गाना सुनीता गोप जी को। एमडी फैजी से वाओ वाओ वाओ, क्या गाना, एकदम जो झक्कास गाना है। और निशांत राय बोले जी लिखेंगे वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है अमन सर जी। और अनिल कपास, अनिल कश्यप जी लिखते हैं बैक टू बैक सभी मस्त मस्त वाले गाने चल रहे हैं। और गजानंद जी लिखते हैं मस्ती मस्ती बेहतरीन लाजवाब सुनीता गोप जी के पसंद लगी है। ओम नारायण जी लिखते हैं कि मस्ती मस्ती वाला गाना सुनकर दिल खुश हो गया है। और सुनीता गोप जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना सुनवाने के लिए। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि मस्ती मस्ती वाला गाना बहुत अच्छा लगा। इसी बात अगला जो डिमांड है हुकुम चंद जांगिर जी का है, नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान, एंजॉय कीजिए।
3: राम कसम मैं जोरू उसे बनाऊंगा।

0: वेलकम बैक। और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं, और पहला तो ये सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: फूलों की दुकानों पर गोरी का मकान, आरे आरे आरे आरे आरे आरे हो। नीचे फूलों की दुकानों पर गोरी का मकान, जब चौबारे से देखे, जब चौबारे से देखे मेरा दिल है बेईमान।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे सौरभ सिंह जी लिखते हैं कि मैं प्रोग्राम सुनता हूँ लेकिन फीडबैक नहीं दे पाता हूँ। भाई क्यों नहीं दे पाते हैं, इतना कितना बिजी रहते हैं भाई, फीडबैक भी दिया कीजिए। और रवि जी लिखते हैं कि आर के रवि जी, तुमसे मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं, मेरी जिंदगी की पूरी कहानी है, और मेरे हर बदलते मौसम में बस तेरी ही हंसी रूहानी है। लोग पूछते हैं कि क्यों बेपनाह चाहते हैं तुम्हें, अब कैसे समझाएं कि मेरी हर सांस में बस तेरी ही निशानी है। जी इससे तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि हुकुमचंद जांगिड़ जी के पसंद बेहतरीन लगी है, लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही झक्कास गाना है, दिल से धन्यवाद है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये फिर बैग
2: आरजे अमन सर जी, सभी भाई या सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं सर, इतना अच्छा अच्छा गाना सुनाने के लिए, इतना अच्छा प्रोग्राम चलाने के लिए, थैंक यू,
0: वेलकम जी। आप सभी दोस्त अच्छे अच्छे गाने भेजते हैं तभी प्रोग्राम खूबसूरत बनता है, क्योंकि अगर आप अच्छे गाने नहीं भेजते तो सच में प्रोग्राम खूबसूरत नहीं बन पाता है। आपके गाने की अच्छी डिमांड से प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ती है, बिल्कुल। और इसी तरह के यानी कि कल लाइव शो में भेजना होगा देशभक्ति।

रुचि रखते हैं कि अपना जोश और उत्साह के लिए कल के भी। अरे सर जी आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मैं बिल्कुल फिट रहूंगा। अगला गाना एंजॉय कीजिए मेराज जी की, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली जी।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, और यहाँ पे ओम नारायण राय जी लिखते हैं कि कल कितने बजे से शो स्टार्ट होगा। जी कल 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा शो, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि छुछुंदर के माथे पे भाई, अच्छा ये वाला गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं इनको। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको मिराज जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा भी गाना प्ले करने के लिए, बहुत और प्रोग्राम शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। सर्वेश भगत जी लिखते हैं कि अच्छा हम जा रहे हैं, अच्छा अभी हम कहाँ जाने देंगे, अभी तो सुनना पड़ेगा। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, मस्त गाना लगा, मजा आ गया सुन के गाने को। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि वाह कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, सुनकर मजा आ गया है। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद। और अमन सर जी बिल्कुल सही गाना आपने अभी सुनवाया, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। तो अमन सर जी कहाँ कोई और चैनल और कहाँ हमारा रेडियो हॉटस्टार चैनल। अमन सर जी आज के गोविंदा के सभी गाने मुझे बहुत अच्छे, और बहुत दिनों के बाद गाने गोविंदा के सुनने को मिले हैं अमन सर जी आज आपके वजह से। तो आज का मैंने अभी तक पूरा कार्यक्रम और पूरे गाने अभी तक मैंने सुने हैं अमन सर जी। अच्छा, अच्छा। आज का कार्यक्रम बहुत शानदार, धन्यवाद।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे ऐश्वर्य सिंह जी लिखते हैं कि शानदार शानदार शानदार गाना है। दीपक कुमार जी लिखते हैं कि अमन जी यहाँ बारिश बंद हो गई है पर रेडियो हॉटस्टार गाने की बारिश चालू है। अच्छा जी, यहाँ बारिश तो नहीं हो रही। और अर्षद जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं गजब का सॉन्ग है जी बिल्कुल। और यहाँ पे शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, गाना सुनाने के लिए धन्यवाद, मतलब इन मजा आ गया सुन के। और इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे ऐश्वर्य सिंह जी का, सुनना चाहते हैं दुनिया की ऐसी की तैसी, एंजॉय कीजिए।

और आज के मेरे यानी कि टॉप पर चल रहे हैं हमारे अनिल कश्यप जी। चलिए आज मैं इन्हीं को कॉल लगाता हूँ और एक मैं लॉटरी निकालूंगा, उसमें जिनका नाम आ जाएगा उनको मैं लगा लूंगा कॉल। तो पहले अनिल जी को कॉल लगाएंगे इस गाने के बाद।

बिल्कुल। और फीडबैक में रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और सौर्य सिंह जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे पसंद को गाने चलाने के लिए। और काजल झक्का जी लिखते हैं बहुत अच्छा गाना लगा, आज का प्रोग्राम भी झक्का। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये यानी प्यार किया है प्यार करेंगे गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि वाह लाजवाब डिमांड करें, थैंक यू सो मच सौर्य सिंह जी। और दीपक कुमार जी लिखते हैं कि ये मच्छर आपका प्रोग्राम सुनने नहीं दे रहा है ये भी प्रोग्राम सुनने लगा है, अच्छा सच में कहा। ओम नारायण राय जी लिखते हैं कि मैं भी टॉप 10 पे आ गया, अच्छा अच्छी बात है। तो यानी कि टॉप 10 में आज हमारे हैं सबसे पहले अनिल कश्यप जी, निशांत राय बोले जी और रणवीर सिंह जी हैं, और गजानन सलोकार जी हैं, और प्रमोद कुमार जी हैं, अशोक पाल जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, और सर्वेश भगत जी हैं, ओम नारायण राय जी हैं, और शिल्पा बेन जी हैं। अब देखते हैं जिनका भी नाम आ जाएगा मैं जरूर यहाँ पे उनको कॉल लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल अनिल कश्यप जी को मैं कॉल लगाता हूँ।

0: बहुत बहुत वेलकम है अनिल कश्यप जी, और आज यानी कि टॉप में बने हुए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, कैसे हैं?
1: थैंक यू सर, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो एकदम झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक घंटे के साथ।
1: आपका बात थोड़ा सा हम भी दोहरा दिए,
0: अच्छी बात है ना।
1: जी ये तो लगाव है, इसके कारण आपका हर चीज पता चलते जाता है, सिवाय थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के।
0: ओके बताइए ना।
1: हम सर
0: जी जी, हाँ बोलिए।
1: गाना मेरा यही थीम पे ही रहेगा या फिर दूसरा गाना भी फरमाइश कर
0: सकते हैं? आप कोई भी सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
1: तो इंसाफ मूवी से सुना दीजिए, चुनरी लहराई तो दिल धक धक करता है।
0: चुनरी लहराई
1: जी, और इस गीत को आपको सुनाना है और टॉप 10 के जितने फैन है सभी को, और खासकर वो 25 लड़की वाला कौन नाम था उनका, विशाल अंगद जी को।
0: विशाल अंगद जी, हाँ
1: जी जी, उनको सुनवाना है।
0: चलिए सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, और फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। आर के रवि जी लिखते हैं कि यानी कि तेरी एक झलक के लिए दिल तरसता है, और तेरे बिन ये सावन भी सूखा ही बरसता है, और तू पास नहीं फिर भी हर लम्हा तेरा एहसास है, और शायद इसी खुशनुमाया एहसास का नाम ही तो प्यार है। ओके जी, और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब चॉइस है अनिल कश्यप जी की। ओके, और ओम नारायण जी लिखते हैं कि अमन जी आज शो में जुड़ कर रहने का माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा, थैंक यू सो मच। और निकला जी क्या कहते हैं, इनकी आवाज़ ही नहीं आती है, पता नहीं ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं ठीक से। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन जी हम भी जुड़ गए। अच्छा, बड़ा जल्दी जुड़ गए भाई, कहाँ थे अभी तक आप, आए अब लगता है। फिलहाल अगला जो डिमांड में, एक मिनट जरा मैं मतलब निकालता हूँ लॉटरी। चलो मैं यानी कि दो लॉटरी निकालता हूँ, ओके, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हो चुका है हमारे अनिल कश्यप जी, दो और निकाल देता हूँ, दो निकालता हूँ, देखते हैं किनका किनका आता है नाम।
1: मुझको कुछ होता है, मैं तेरे मिलने से पहले दीवाना।
0: फिलहाल मैं जो अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ हमारे ये दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, मैं तो रास्ते से जा रहा था, एंजॉय कीजिए।

ओके मेरे पास दो नाम आ चुके हैं, ओम नारायण राय जी और शिल्पा बेन जी। ओ माय गॉड, इन लोग सबसे नीचे ही हेलो और इन लोग का नाम आया हुआ है। वही कोई बात नहीं, तो आप लोग अपना अपना मुझे ये व्हाट्सएप पर हाय लिख के भेजिएगा ताकि मैं आपको कॉल लगा सकूँ।

0: हाय क्या गाना है अमन भाईजान, एकदम जाकर दिल पर सीधा लगता है, बहुत मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके जी वेलकम है आपका भी। और ये क्या कहते हैं,
2: मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। दीपक कुमार का सॉन्ग बहुत बढ़िया लगा अमन सर जी, धन्यवाद देते हैं।
1: ओके तो इसी बात पर ये वाला गाना थोड़ा सा मैं सुनवाता हूँ, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, और बहुत सारे फीडबैक भी है मेरे पास आए हुए हैं। और गजानन जी लिखते हैं कि दीपक जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं उनको। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि भंडारा खोला हुआ है, अच्छा ओके। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि हाँ मैंने भेजे हो गया, अभी मैं कॉल लगाऊंगा शिल्पा बहन जी आपको। और प्रमोद जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और ओम नारायण राय जी लिखते हैं कि जी जी बिल्कुल आपका नाम आया हुआ है, मैं आपको कॉल लगाऊंगा। ओके जी बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि चलो इश्क लड़ा है, गाना बहुत अच्छा लगा है। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि गाना वेरी नाइस है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी कल की तैयारी करनी है क्या? हाँ बिल्कुल करनी है ना। और प्रियंका जी लिखते हैं कि चलो इश्क लड़ा है, गाना अच्छा लगा है। ओके, अब फिलहाल शिल्पा बेंजी को कॉल लगाते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है आपका। और कैसी हैं शिल्पा बेन जी? बहुत बढ़िया है ना। और प्रोग्राम सुन रही हैं?
1: हाँ जी सुन रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगी?
1: याद तो मैं वो तेरी याद
0: जी,
1: हाँ वो यादें रह जाती है, वो गाना है ना दुला मलिक का वो।
0: अच्छा, याद रह जाती है। ओके, याद बस याद रह जाती है।
1: हाँ,
0: है ना। शायद एक गाना याद तेरी याद रह जाती है ना।
1: हाँ
0: ओके, ढूंढता हूँ मैं आपके गाने को। कहाँ है याद तेरी याद। ओके चलिए एंजॉय कीजिए। ना ये नहीं है। हाँ ये

बिल्कुल इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ दो दोस्तों का है, एक आर के रवि जी का है और आर के रवि जी के साथ एक साहब और भी है, क्या नाम है उनका, यानी के परवेज आलम जी, और पर दोनों सुनना चाहते हैं ओए राजू प्यार ना करियो। इस गाने के बाद यही प्ले करता हूँ, फिर मैं कॉल लगाता हूँ।

0: बिल्कुल ओए राजू प्यार ना करियो डरियो क्योंकि दिल टूट जाता है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि याद रह जाती है गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि याद याद बस याद रह जाती है गाना बहुत ही प्यारा लगा है। रवि जी लिखते हैं कि याद रह जाती है ब्यूटीफुल से धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बस याद रह जाती है गाना बहुत अच्छा लगा है शिल्पा बेन जी का। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन जी आपने तो मेरे यानी कि किराना का जो शॉप है वो रोज रात 9 बजे बंद हो जाता था। जब से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ तो मेरी शॉप 10:30 बजे तक खुली रहती है और मेरा भी फायदा हुआ है ग्राहकों का भी फायदा हुआ है और बाहर रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बता दें धन्यवाद। और प्रियंका जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया मजा आ गया सुन के। और फैज जी क्या कहते हैं सुनते हैं
1: मेरा गाना बजा दिए भाईजान बजा दीजिए
0: अच्छा जी बजाते हैं मत लीजिए टेंशन। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ओ राजू प्यार ना करियो डरियो राजा बाप गाना सुनने को मिला मजा आ गया सुन के। शिल्पा बहन लिखते हैं कि ओ राजू प्यार ना करियो डरियो गाना बहुत अच्छा लगा और थैंक यू मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। और ओम नारायण जी लिखते हैं कि गोविंदा यानी जी यानी आप यानी कि कहाँ से सुन पाते रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे सच में सभी गाने बहुत अच्छे से बजे हैं आज जब के। और प्रमोद जी लिखते हैं कि ओ राजू प्यार ना करियो डरियो लाजवाब गाना है। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा लगा है। और फीडबैक सुन लेते हैं
2: ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है चाहत की।

0: की बातों में सोच ले ओए राजू, प्यार ना करियो। सुपर लाजवाब बेहतरीन सॉन्ग, मजा आ गया।
1: ओके, इसी बात पे MD5 जी का गाना प्ले करने के बाद मैं उनको इनके कॉल लगाने वाला हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं।

0: बहुत से दोस्तों का डिमांड छूटने वाला है, सभी का पूरा नहीं हो सकता है।
1: सपनों की रानी मेरी जिंदगानी, जल्दी से आजा
0: आजा आजा,
1: रुत मस्तानी लड़की दीवानी, झलक दिखा जा
0: दिखा जा दिखा जा, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं है ना।

0: ओम नारायण राय जी, बहुत बहुत बधाई हो आज के विनर बनने के लिए। और बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कॉल लगाने के लिए, लेकिन मैं लगा नहीं पा रहा हूँ।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
0: और कैसे
1: सभी रेडियो हॉट स्टार के दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस कल है, एडवांस में सभी
0: जी, धन्यवाद आपको
1: देना चाहता हूँ। जी सर
0: जी।
1: मैं चाहता हूँ कि सभी दोस्तों के लिए जो कल स्वतंत्रता दिवस है उनके लिए मैं आई लव माई इंडिया का सॉन्ग फरमाइश करना चाहता हूँ सर, आपके माध्यम से।
0: बिल्कुल एकदम सुनवाऊंगा, एंजॉय कीजिए।
2: मेरा जिया कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण

0: बिल्कुल ये मेरा इंडिया है और इट्स हैपन वाले इन इंडिया, ये भी है ना, वैसे फीडबैक भी सुनते हैं।
1: आपका दिल से शुक्रिया गाना प्ले करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका। और प्रमोद जी लिखते हैं कि एमडी फैजी की चॉइस लाजवाब लगी है, और बाबूलाल जी लिखते हैं कि एमडी फैजी की डिमांड शानदार लगी है, और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना था, और ओम नारायण राय लिखते हैं कि मेरा गाना को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शिल्पा बहन लिखते हैं कि आई लव माई इंडिया, बहुत ही प्यारा गाना है। निकला जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी भी।
2: Mr. Aman, don't go America. America is quite expensive. It's best to live in India. India is the best.
0: Okay.
2: East to west, India is the best.
0: Thank you so much, dear Nicholas. And Ajay Bhagat ji likhte hain ki I love my India. Bahut hi pyara gana hai. Aur Gajanand ji likhte hain ki Ye Duniya Ek Dulhan. Bahut hi pyara gana hai. Dhanyawad dete hain. Aur yani Priyanka ji likhte hain ki I love my India. Bahut hi pyara gana hai. Aur समुदा सिंह जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है। अमन सर जी थैंक यू सो मच। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, ये बबीता जी का है, ऊपी वाला ठुमका लगा।

0: गौरी निकला जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनके लिए।
1: Happy Independence Day, all my Indian brother.
0: Thank you so much.
1: Jai Sri Ram. I love you all.
0: Thank you so much.
1: Enjoy your wonderful day tomorrow.
0: Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. और इसी बात पर, इस गाने पर मुझे गाना याद आ रहा है, इसको पहले सुनवाता हूँ फिर अगला डिमांड में रहता हूँ। और ये गाना मेरे दिल की आवाज है।

बिल्कुल, मैं हूँ दिल का रईस ज्यादा और गजानंद जी लिखते हैं अमन जी आज का प्रोग्राम नंबर वन हुआ है। और प्रमोद जी लिखते हैं अमन सर जी आपकी चॉइस ऑसम लगी, थैंक यू सो मच। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं आपकी पसंद बहुत ही बढ़िया लगी है, धन्यवाद। और सरफराज जी लिखते हैं बिल्कुल सर जी, दुनिया जो भी समझे हम जानते हैं आपके दिल के शहजादे हो, थैंक यू।

6, 5, 11 घंटा मतलब यानी 6, 5, 11 होने वाला है, यानी के यानी 5 घंटे का शो। थैंक यू सो मच। और फिर भी बहुत से दोस्तों का डिमांड छूट

0: और कुछ फीडबैक आए हुए हैं, शामिल कर लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पे शिल्पा बेंजी लिखते हैं कि ये क्या है प्यार बताओ ना, और ये गाना अच्छा लगा है। प्रमोद जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच, मजा आ गया सुन के। और ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी भी।
1: अमन जी नमस्ते, आज तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया।
0: अरे इससे पहले भी बहुत बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं मैं। ओके अगला और आखिरी गाना।

0: ओके, तो आज का जो यानी कि बर्थडे गर्ल है उनके स्पेशल रिक्वेस्ट है, वो गाना सुनना चाहती है, यानी पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, तो एंजॉय कीजिए बर्थडे गर्ल
1: पापा मैं।
0: और आपको जन्मदिन की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जी हजारों साल। और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब बाय बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया, हाय क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

को जो छू जाए। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरीन तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रख दूं।

0: ब्रह्मानी है जिसको रतन एक दिन है।
1: मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूँ। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूँ, जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो।
2: बस बहुत हो चुकी है अनर्गल बातें, इसकी पूछ चला दी जाए।
1: महाराज रावण यम दिन चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा

महाराज रावण श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, श्री एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जय श्री राम।